0: समाप्त फरमा लीजिए।
1: तुर्क कौमी खुफिया एजेंसी के सर इब्राहिम कालन ने अंकरा में इराक की पार्लियामेंट स्पीकर से मुलाकात की है।
0: तुर्क वजीर सनत का कहना है कि एक नए कौमी एक्शन प्लान के जरिए मसनू जहानत के मैदान में सव्य अफल के ममालिक में हम अपनी जगह बनाने का इरादा रखते हैं।
1: गजे में 22,000 ऐसे मरीज जख्मी मौजूद हैं जिन्हें फिल फॉर बैन मुल्क इलाज की जरूरत लाहक है।
0: मुत्तहिदा अरब अमारात ने उम्मीद जाहिर की है कि अलजजायर का अबू जहबी के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का फैसला आर्जी होगा।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जुम्मे को पेंटागन में मुनक़्क़द एक प्रोग्राम शिरकत करते हुए 11 सितंबर के हमलों की 25वीं बरसी मनाएंगे।
0: और अब खबरें तफसील के साथ।
1: तुर्क कौमी खुफिया एजेंसी के सरबराह इब्राहिम कालन ने अंकरा में इराकी पार्लियामेंट स्पीकर हैबतुल खलबूसी से मुलाकात की ताकि इलाकई बैन अवी पेशरफ पर तबादला ख्याल किया जा सके। जराये के मुताबिक इस मुलाकात तुर्की इराक के दरमियान तआवुन को मजबूत बनाने खसूस सिक्योरिटी के शोबे में तमाम तरीन हल तलब मसायल को हल करने पर तवज्जो मरकूज की गई है।
0: तुर्क वजीर सनत और टेक्नोलॉजी महमद फातह काजर ने कहा है कि तुर्की बड़े सरमाए के इर्तिकाज और एक नए कौमी एक्शन प्लान के जरिए मसनूई जहानत के मैदान में सफ़े अव्वल के ममालिक में अपनी जगह बनाने का इरादा रखता है। गुज़िश्ता रोज़ इस्तांबुल में मुनक़िदा जीटेक्स एआई तुर्की इवेंट से खिताब करते हुए काजर ने कहा कि हुकूमत मुल्क के जिद्दत के माहौलियाती निज़ाम को वसी करने के लिए जामे मुआविनत मुतारिफ़ करवा रही है। उन्होंने बताया कि इस वक्त तुर्की में 1,700 तहकीकती और तरक्याती मराकज़ काम कर रहे हैं और हुकूमत 115 टेक्नोपार्कस में 13,000 से ज़ायद फर्मों से तआवुन कर रही है। उनका कहना था कि सरकारी फंड ऑफ फंड्स मैकेनिज्म ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए 2.8 अरब डॉलर को मुतहर किया है, जबकि हाल ही में ऐलान करदा 300 मिलियन डॉलर की कैपिटल फंड्स के जरिए इस सेक्टर में 750 मिलियन डॉलर से जायद की सरमाकारी लाने की तवक्को है। उन्होंने मजीद कहा कि तुर्की के पास 8 यूनिकॉर्न्स हैं और हुकूमत का हदफ 1,00,000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कायम करना है। काजर ने मजीद कहा कि हुकूमत ने तुर्की साबिक इस्तांबुल अतातुर्क हवाई अड्डे के टर्मिनल को दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप हब में तब्दील कर रही है ताकि इस्तांबुल की बैन अवी टेक्नोलॉजी मरकज़ के तौर पर पोजिशन को मजबूत किया जा सके।
1: गजा में 22,000 ऐसे मरीज जख्मी मौजूद हैं जिन्हें फिल फॉर बैन मुल्क इलाज की जरूरत लाहक है। गजा मीडिया ऑफिस के डायरेक्टर जनरल इस्माइल स्वाप्तन इसराइल न्यूज साइट टाइम्स ऑफ इसराइल की इस रिपोर्ट पर तुर्क मीडिया को अपना रद्दअमल दिया जिसमें दावा किया गया था कि अक्टूबर में जंगबंदी के नफाज के बाद से अब तक तकरीबन 10,500 अफराद गजा से बाहर गए हैं और 6,000 वापस लौटे हैं। स्वाप्तन ने कहा इसराइल की जान से गजा में दाखिला और अखराज के हवाले से बताए गए दादोशुमार इंतहाई नाकाफी हैं, ये इंसानी जरूरियात को कम अज कम सतह पर भी पूरा नहीं करते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया गजा से फिल फोर निकाले जाने वाले 22,000 मरीजों जख्मियों में हजारों ऐसे बच्चे शामिल हैं जिनकी तकलीफ में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। डायरेक्टर जन्म जीत का इसराइल लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मौत को धकेलने जानबूझ के समय को तोड़ देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने आलमी तारीफ अदा बरदरी आलमी दारा सेहत और कौमता के इदारों से मुतालबा किया इसराइल को मजबूर करें कि सरहदी रास्तों को इज्तमाही सजा के आले के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दे।
0: मुत्तहिदा अरब अमारात ने उम्मीद जाहिर की है कि अलजजायर का अबू जहबी के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का फैसला आर्जी होगा। वाज़ह रहे कि अलजजायर ने 11 सितंबर से अमारात में दर्ज शुदा सिविलियन और फौजी तैयारों के लिए अपनी फिजाई हदूद बंद करने का फैसला किया है। अमाराती वजारत खारजा ने कहा है कि वह तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने और इफहाम और तफहीम तआवुन और मुश्तरक खुशहाली को फ़रोग देने के लिए पुरअज़्म है। उमूर खारजा ने इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि अलजजायर का यह फैसला आर्जी होगा और दोनों अवाम के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को बरकरार रखा जाएगा।
1: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जुम्मे को पेंटागन में लगता है एक प्रोग्राम शिरकत करते हुए 11 सितंबर के हमलों की 25वीं बरसी मनाएंगे। इन हमलों के शिकार अफराद को खराज अकीदत पेश करेंगे जिन्होंने अमरीकी खारजा पॉलिसी कौमी सलामती की नौयत बदल दी। 2001 में कायदा के कारिंदों ने तैयार न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पेंटागन पेंसिल्वेनिया के शहर शेंक्सविल के करीब एक मैदान में दे मारे थे। इन हमलों में तकरीबन 3,000 अफराद लुकमा अजब बने थे। इन हमलों ने अमरीका की नाम नहाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तेजी लाई थी जिसमें इराक अफगानिस्तान पर हमले शामिल हुए। ओबरॉन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के मुताबिक कार्रवाई में अंदाजन 4.5 से 4.7 मिलियन अफराद हलाक हुए। अमेरिका के नायब सदर जे डी वेंस न्यूयॉर्क में साबिक सदूर के साथ यादगारी तकरीब में शरीक होंगे जबकि इंतजामिया के दीगर हुकाम शेंक्सविल में मुनक्कद तकरीब में शिरकत करेंगे। ट्रंप मुसलसल

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: बाइकार की तरफ से कौमी मुनफरद और पत्यार करदा खंजी जंगी तैयार अपनी ऑपरेशन सलाहितों को बेहतर बनाने तवील फारसे तक मुख्तलिफ किस्म के हथियारों के इंतजाम को बढ़ाने में साबित कदमी से आगे बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में की गई आजमाइश में रॉकेट सार की तरफ से तैयार करदा ड्रोन 300 सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए 250 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर मौजूद हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। आजमाइश के दायराकार में ठेकेदार वाकया चोल पर वास तरबीती और आजमाइश सेंटर से उड़ान भरने वाला अखंजी बोरास्पत में वाकया टेस्ट इलाके तक पहुंचा। स्नोप के सहायक करीब अंजाम दिए गए टेस्ट में समंदर पर मौजूद हदफ को अखंजी से निशाना बनाया गया। इससे कबल 122 और 230 नाम के सुपरसोनिक मिसाइलों का इंजाम कामयाबी के साथ सर अंजाम दिया गया था। 300 मिसाइल के भी अब कामयाब इंजाम के साथ अखंजी की तवील फासला आला दुरुस्ती की सलाहियत एक नए दर्जे तक पहुंच गई है।
2: कनाडा यूक्रेन को फिजाई दिफा का एक इंतहाई अहम पैकेज और उसके साथ साथ तवानाई की सनत के लिए भी मदद फराहम करेगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमिर ज़ेलेंस्की ने वज़ीर आज़म माकानी से मुलाकात से कबल ये बात कही। ज़ेलेंस्की ने कहा कि फिजाई दिफा का यह पैकेज इंतहाई अहम है, लेकिन उन्होंने इस इमदाद या तवानाई के शोबे के लिए कनाडा के तयशुदा मनसूबों के बारे में तफसीलात फराहम नहीं की। फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद से कनाडा यूक्रेन के लिए मजमूई तौर पर 18.5 अरब डॉलर से ज़्यादा की इमदाद का आज़म कर चुका है, जिसमें 6.1 अरब डॉलर की फौजी इमदाद भी शामिल है।
1: अमरीकी महकमा खजाना ने इक्तसादी बाइकॉट ऑपरेशन के तहत ईरान को माली मुआवना फराहम करने वाले एक बड़े बैन अल-अक़वामी खुफिया नेटवर्क पर कड़ी पाबंदियां आयद कर दी हैं। इस कार्रवाई के नतीजे में मुख्तलिफ मुल्क में फाल मुतद अफराद इदारों के नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। ईरान के सासों का कंट्रोलिंग दफ्तर की तरफ से जारी करता ईरान में मुताबिक पाबंदियों का दायरा इंतहाई वसी है। ब्लैक लिस्ट की फहरिस्त में कतायब हिजबुल्लाह के आला कमांडर्स पासदार इंकलाब को असलाह फराहम करने वाली कठपुतली कंपनियां तेल की आमदनी लुबनानी हिजबुल्लाह तक पहुंचाने वाले सराफा खाने और दीगर मालती नेटवर्क के सरगना शामिल हैं।
2: फिलिपाइन के फायर फाइटर्स मनीला से मगरबी सुबह पलावान जाने के दौरान आग लगने से 5 अफराद के हलाक होने, 80 से ज्यादा अफराद के लापता होने वाली एक फेरी बोट जो कि मुकम्मल तौर पर जल चुकी है में दाखिल हो चुके हैं। इमदादी टीम बुध की रात लगी आग के एक दिन से ज्यादा अरसे के बाद बोट में दाखिल हो सकी, क्योंकि घने धुएं और शदीद गर्मी की वजह से पहुंचने में उन्हें ताखिर हुई थी। फिलिपाइन कोस्ट गार्ड ने लापता अफराद की तादाद को 86 से कम करके 84 कर दिया है। बाद अजां तस्दीक के बाद मालूम हुआ कि फहरिस्त में 2 अफराद बोट पर मौजूद नहीं थे। कुल 43 अफराद को बचा लिया गया है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक फेरी में 117 मुसाफिर और अमले के 17 अरकान मौजूद थे। बच जाने वालों में शेर रिचर्ड

0: ब्रासिलियानो ने जीएमए न्यूज को बताया कि उन्होंने इब्तिदा में हल्का सा धुआं देखा जो तेजी से भड़क उठा और सेकंडों में फेरी में फैल गया। उन्होंने कहा कि वो और दीगर मुसाफिर तकरीबन 2 घंटे तक मदद आने तक समंदर में तैरते रहे। दरियासना लापता मुसाफिरों के रिश्तेदार मनीला में शिप ओनर के दफ्तर के बाहर जमा हो गए और मालूम का तकाजा करते रहे, क्योंकि ये दफ्तर की किसी की भी माफ़ कीजिएगा क्योंकि यह दफ्तर किसी की भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। फेरी कंपनी ने कहा है कि वो वाकई तफ्तीश करने वाले हुकूमती हुकाम के साथ पूरी तरह तआवुन कर रहे हैं।
1: रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 11 रुकनी ब्रिक्स सप्लाई इजलास के जिसमें मशरक वस्ता और यूरोप में जंगों के साथ साथ माशी मुश्किलात के मामला नुमाया रहने की तवक्को की जाती है में शिरकत की गर्ज से भारतीय दारकूमत नई दिल्ली पहुंच गए हैं। भारतीय सफारती जराये के मुताबिक पुतिन रानी सदर मसूद पजिशान जुम्मे से शुरू होने वाले दो रोजा इजलास के दौरान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। रूसी खबरसान एजेंसी RIA नोवस्ती की नशकदा वीडियो के मुताबिक पुतिन नई दिल्ली के पाम एयरफोर्स अड्डे पर उतरे। चीनी सदस्य के लिए 2019 के बाद भारत का पहला दौरा होगा। मुतनाज़ा हिमालयी सतह पर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 6 साल पेश होने मोहलक फौजी झड़प के बाद हरीफ पड़ोसियों के दरमियान मुहतात नरमी की जान सबसे बड़ा अहम कदम तस्वर किया जाता है।
0: स्विट्जरलैंड के जुनूब मशरकी इलाके ग्राबॉन्डन में एक होलनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। बताया गया है कि सोश और जरनेस के दरमियान पहाड़ी रास्ते पर नदरलैंड्स के सयाहों को ले जाने वाली एक मुसाफिर बस उलट गई। इस हादसे में कई लोगों की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया है। यह टूर बस तकरीबन 48 मुसाफिरों को लेकर ऑस्ट्रिया से स्विट्जरलैंड के एक रोज़ा मालूमती दौरे पर थी। बस के एक हिफाजती बाढ़ से टकराने और सड़क के किनारे उलट जाने के फौरन बाद इमदादी कार्रवाइयों के लिए मुतअद्दिद एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स जाए वकूअ पर रवाना कर दिए गए हैं। टूर ऑपरेटर के हुकाम ने ताहाल हलाक और ज़ख्मी होने वालों की हतमी तादाद के बारे में कोई वाज़ह मालूमात फराहम नहीं की हैं, क्योंकि जाए वकूअ पर बड़े पैमाने पर इमदादी काम अब भी जारी है। स्विट्जरलैंड के सदर गाय पारमेलन ने इस हादसे पर गहरे दुख और सदमे का इजहार करते हुए हलाक होने वालों के ख़ानदानों से ताज़ियत की है और वाकई की वजूहात जानने के लिए एक जामे तहकीकात शुरू करने का ऐलान किया है।
1: जूनियर कांगो के मशरक सूबे जनूबी क्यो के दारकूमत बोकावो में लगने वाली बड़े पैमाने की आग में हलाकतों की तादाद बढ़ गई है। यह का दो जिला के चेमपोंडा मोहल्ले के घर में शुरू हुई, देखते देखते तेज से फैलते हुए आसपास के 2 प्राइमरी स्कूलों तक पहुंच गई। लकड़ी के ढांचे की बिना पर आग की पेट में आने वाले उजामा फोरहावा प्राइमरी स्कूलों के हलाक होने वाले तलबा की तादाद 29 हो गई है। हुकाम के मुताबिक 25 तलबा जख्मी, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। आखिर दिनों में स्कूल की दोनों इमारतें मुकम्मल तौर पर जलकर राख बन गई, जबकि मोहल्ले के 300 से ज्यादा घर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके हैं। इसके साथ ही सदाए तुर्किया से खबरें खत्म। तो आइए सामिन अब तान ताश्री की आवाज़ में एक तुर्की नगमा सुनते हैं। गाने के बोल हैं हर हाल दे।